0: closer to your heart. Your favorite radio station, Radio Zozola, 96.4 MHz. जलजला टाइम चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 7 बज्यो।
1: यस टाइम चेक का प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्रणाली तिलोतमा 5 मडिग्राम रूपन्देही।
2: के तपाईलाई गर्दन वा कम्मरमा नसा च्यापी

श्री गणेशाय नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। ब्रह्मा मुरारी स्थिपरन्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे।

0: मेरो लागि उमायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका यो मस्तज जरुरी सूचना जुहो बेला खेमरी दे गरम ओबोतरी जेऊ बेला सुनो फुरी कता ओचुगुरी जेऊ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागि नै मस्त ज सम्भावना ताई आउ ये जिमे प्राकृतिक सम्पदा र तक्षेप्त ज सक्षम नारी वातावरण मिले ने लख्यप्ता असर किएने रि उमूल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानाले भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिएने सुनो नाखार नामे ल मे लागि नै सज जिमी जिमी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख
1: वन
0: जङ्गल
1: सामुदायिक बने हो अनुगमन दिने व्यवस्था
0: गेसो छामेला खोरेल चाउसी फोरिए हरिदे तरिन गाई गेजो मेके लैजु अब नजिरे बनाए गेम एल गेजो मेके नलाए औलेम लायो के नाइए
1: वन जङ्गल जुडिसियो घेङ बारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा र सताउँछु छिमी ने चाउसो सैदेकी खेले
0: वन जङ्गल मेला दिगेमाइए मेला दिकिनी पाँच जना खरनाम दार मिलिदे बनाए चानो जन ने गेसो ये
1: बटास उचिलिजु बेला को हिजिन के कोटल ने के सतांगिनी ने नखेम छिन्नी ने चाउसो गेसो ये
0: ने लागिने निताए गे मने गे बचिए सोनो अरुले मने गे बचया
1: के छ थामला पोयाल ने लागियो के सन्तिनी गे छोटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाए उनी कार्यालय ल खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति पोबाङ रोल्पा।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।